और अगर वो तेरे दर पे हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रस्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे मैं सबसे तुमको आगाह करूंगा।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

0: Number 1 Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya UCP ki duniya
1: Sufi sings who that which is that which was that which will be
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम दिस इज मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर
6: And this is Dr. Gulrez Ahmed from Mechanical Engineering Department. I am an associate professor over there.
5: Today, we'll be talking about outcome-based education and why it's important all over the world and why it's being implemented in different universities in Pakistan as well. And our guest speaker, Dr. Gulrez Ahmed, will be explaining about outcome-based education and its different modules and what are actually the ongoings in this particular field.
6: Right. So we will start with the OBE, which is known as outcome-based education. In my opinion, in Pakistan, students are being taught curriculum and the curriculum is not being applied so that their skills are managed and their skills have to be like assessed. So it is better to have a system in which they can be assessed as well as there is an analysis at the end that have they achieved those skills.
5: Dr. Sir, please can you explain how outcome-based education is different from traditional education process?
6: So the traditional is basically teacher is giving input to the students and they are assessing through the assessments. And if we talk about outcome-based education, it is basically student-centered and it is not the typical thing. And in this, I think it is the problem with our usual system in which when we are doing primary and secondary education over there, these are not being applied correctly. And I think we should improve the system of our primary as well as secondary education. And in order to do that, we should have some rubrics to follow. And those rubrics will basically assess whether the students have achieved something out of their education. Something means the skills.
5: Okay, so as you have told, to my understanding, it means that not just relying on cramming different, chapters or stubbing down different kind of, knowledge down your throats. It's basically, it depends on the level of skill you achieve. Mm-hmm. The students are, outcome-based education is basically centered around what kind of skill and what level of skill is basically achieved.
6: Yes.
5: Okay, thank you so much, Arsab. Okay, so there is also an International Engineering Alliance. Can you tell us about that, sir?
6: There are like different organizations around the world which have helped us as engineers to basically apply outcome-based education. To my knowledge, like there are four educational accords. One is Washington Accord. The second is Sydney Accord, Dublin Accord, as well as Abbott. So Abbott and Washington Accord are the main ones. And we as engineers in Pakistan, the Pakistan Engineering Council has MOUs with a Washington Accord, and they have applied Washington Accord in its true spirit.
5: अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि जो OBE है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोसेस है जो साला साल से चलता आ रहा है, उससे किस तरह डिफरेंट है ये
6: OBE सिस्टम? अगर मैं इसकी बात करूं तो वो बेसिकली क्या करता है कि असेसमेंट्स तो होनी है, जो हमारे पास टेस्ट्स क्विजेस वगैरह होने हैं स्टूडेंट्स के, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, वो तो उसी ट्रेडिशनल उसके अंदर चल रहा होता है. बट OBE सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने उन असेसमेंट्स को मैप करते हैं, कोर्सेज को मैप करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ आउटकम्स के साथ, कुछ स्किल्स के साथ, ताकि हम उन्हें असेस कर सकें. असेस किस तरह करेंगे? बेसिकली हम बताएंगे कि स्टूडेंट ने ब्लड से एक असाइनमेंट की है, तो उस असाइनमेंट में उसने क्या अचीव किया है, उसको हमने किस तरह असेस किया है, उसको उसकी असेसमेंट का लेवल क्या था, और उस असेसमेंट लेवल पे उसने उस स्किल को अचीव किया है या नहीं किया. ये हमारा बेसिकली सिस्टम है जिसको हम OBE कहते हैं.
5: चलिए, इट्स गुड. अच्छा, अब जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो, कि उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं OBE के ऊपर.
6: OBE के अंदर बेसिकली यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट इट, जो अलायंसेज हैं वो मेरे पास चार किस्म की हैं, जो चार मेजर बॉडीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो ये काम कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग को हेल्प आउट कर रही हैं. नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को देखते हुए जो इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये अलायंसेस की हैं, उन अलायंसेस को देखते हुए बाकी भी अदर डिसिप्लिनस भी इसको अप्लाई कर रहे हैं. तो हमारे पास अगर मैं इनकी अलायंसेस की बात करूँ तो देर आर फोर मेजर अलायंसेज जिसके अंदर वॉशिंगटन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है, डुबलिन अकॉर्ड है और एबट है. वॉशिंगटन अकॉर्ड को इंजीनियरिंग काउंसिल इज फॉलोइंग इन इट्स ट्रू स्पिरिट. और अगर मैं इसकी बात करूं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, वो बेसिकली अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस फर्दर करेंगे कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, तो वो इज वन ऑफ द सिस्टम्स जिसके साथ हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने MOUs साइन किए हैं, और उन MOUs को बेसिकली वहाँ से टीम आती है और उसको असेस करती है और सारी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोसेसेस हैं उनको देखती है.
5: ओके, सो डॉक्टर साहब, इसका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स सपोज इन यूनिवर्सिटीज के साथ एजुकेशन वहाँ से लेते हैं जहाँ वॉशिंगटन अकॉर्ड और PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हमारा तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ऑल थ्री प्रोग्राम्स आर एक्चुअली एक्रेडिटेड बाय PEC वॉशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो PEC से रिकॉग्नाइज नहीं है या वॉशिंगटन अकॉर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है? इसके ऊपर UCP के अंदर स्टूडेंट्स को आने का क्या मेजर बेनिफिट होगा आपके ख्याल में?
6: देखिए, मैं दुनिया की अगर बात करूँ ना, तो हर अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी कोर्स उठा के देखें, तो उसके अंदर ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव दिस. वो ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टूडेंट्स की आउटकम्स क्या हैं. तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिस्टम को अडॉप्ट इंजीनियरिंग काउंसिल ने थोड़ा सा लेट किया है, 2014 के अंदर किया है, बट ओवरऑल दुनिया के अंदर इसको जो है ना सिस्टम को अडॉप्ट बहुत पहले से कर दिया हुआ था. तो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दे कैन कम्पीट विद एनी other student and they do not have to get re-accredited from any other organization. Let's say if they move to US or Australia ne to even pichle dino ke andar ye kaam bhi kiya tha ke kyunki we were accredited with the वॉशिंगटन अकॉर्ड, तो हम उस अकॉर्ड की वजह से उनको वीज़ाज दे रहे थे जिसके अंदर 476 कैटेगरी थी, जो यहाँ से इंजीनियर डायरेक्ट अप्लाई करते थे और वहाँ पे डायरेक्टली जॉब्स के लिए एलिजिबल थे. अब क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी सैचुरेशन हुई है, तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर दिया उसको, यानी कि ऑब्वियसली बहुत सारी जो कोविड के बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे मूव किए हैं, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है. बट ऑब्वियसली इस एक्रेडिशन के बाद वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को कि उनको बाहर के एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते और डायरेक्टली वो जॉब मार्केट के लिए सूटेबल हो जाते हैं.
5: कीप लिसनिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक एट FM 92.6 UCB की दुनिया.

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक। सो डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि भाई अगर आप पाकिस्तान की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल करते हैं जो PEC आई एन वाशिंगटन एकॉर्ड पे एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के स्टेटस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एंड सर अब ये पता करना है कि एक्चुअली ये जो एक्रेडिटेशन है इसका प्रोसेस कैसे होता है या इसका क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली इसका बता सकते।
2: बेसिकली अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना एक विजन इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका कोई विजन है, उसने जितने स्टूडेंट्स या जितनी फैकल्टीज को भी यहाँ पे अकोमोडेट करना है, जितनों को भी टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने एक विजन बनाना है। फिर उसका एक मिशन भी होता है यूनिवर्सिटी का। मिशन किस चीज़ का है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का अपना मिशन है, इसी तरह अगर मैं FOST की बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका अपना मिशन है सारी, यानी कि अगर मैं UCP के हर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि हम जो स्टूडेंट्स को टीच करेंगे दे विल बी एबल टू बी अ गुड इंजीनियर एज वेल एज साइंटिफिकली साउंड एंड दे हैव इनोवेटिव आइडियाज एट द एंड ऑफ दैट डिग्री। तो अब अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो आप विजन अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अपना मिशन इंट्रोड्यूस करते हैं, मिशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद जो है आप ये अपने डिपार्टमेंट, जो ऑब्वियसली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स ने अलग-अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने कि मैं ये इस किस्म का इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर या फॉर दैट सेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, आप साउंड होते हैं, आपको पता होता है कि जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी डिग्री के, जो आप डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तब उसके बाद आप बेसिकली ये जो वॉशिंगटन अकॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर मैं जनरली जेनेरिकली बात करूं तो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज फर्स्ट एट्रीब्यूट, देन आफ्टर दैट हम ये कहेंगे जी प्रॉब्लम एनालिसिस आना चाहिए, उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए, पहले नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस होगा, देन आफ्टर दैट they should be able to design something and develop solutions, because obviously there are like problems that are occurring in our system, aur un system ke andar jaise abhi agar main baat karu to hamare paas bahut sare aise problems hain jinko address karna baki hai on Pakistan level as well as internationally, bahut sari aisi problems hain jinko address nahi kiya hua, to ab development aani chahiye unko as engineers, they should be innovators and they should be able to investigate, which is next attribute, के उनको investigate करना आना चाहिए कि कहाँ पे problem आ रही है, उनको modern tools use करने आने चाहिए, which is the next one. अगर modern tools की बात करूँ तो अब अगर मैं एक engineer बना रहा हूँ तो engineer must be sound in applying problems on a simulation, like they should be able to apply simulations, they should be able to have sound knowledge of all the things, all the applications that are available.
1: सर चले मॉडर्न टूल्स की अगर बात करें, आपने बताई है तो हम UCP के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, तो क्या यह हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं मॉडर्न टूल्स के लिहाज से? ठीक है, इस तरह के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं, जिनसे अपने स्टडीज के अंदर और अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लेवल पे लेके जाने के लिए?
2: देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास टूल्स तो हमारे पास सारे हैं जो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, और अगर कोई नई ऐसी इनोवेटिव मशीनरी है जो ज़रूरी है तो हमारा डिपार्टमेंट तो उसको फौरन एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमने 3D प्रिंटर्स एक्वायर किए हैं और वो मॉडर्न है बेसिकली, स्टूडेंट्स ने कभी सुना भी नहीं होता आजकल, अभी इतने वो आम नहीं हुए, दे आर नॉट दैट ईजी टू गेट as well, because obviously government ki thodi si restrictions hain, but as an educational institute we are able to get those things aur unko phir hands on practice uske upar karwate hain. Phir jaise ki softwares bahut sare hain jiske andar agar main softwares ki baat karun, on mechanical engineering solid works ke upar hum kaam karwa rahe hain, hum inko jo hai programming languages bahut sari apply karwa rahe hain, python ho gayi aur jo ki machine learning के अंदर आजकल आर्टिफिशियल

0: सब कुछ देख सकता है. ही हैज सो मच नॉलेज के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन द नियर फ्यूचर अगर हम इन मॉडर्न टूल्स को अप्लाई ना करते जाएं, साथ साथ इनोवेट ना करते जाएं, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि स्टूडेंट्स आपको आके बता रहे हों कि सर ये जो है ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देखी हुई है, या मैंने इसकी वीडियो देखी थी, या कुछ भी अप्लाई किया है. तो इट इज़ पॉसिबल कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना कर सकें, वो गाइड कर रहे हो अपने टीचर्स को.
1: तो इसका मतलब है यूएसबी इज वेल इक्विप्ड विद दोस मॉडर्न टूल्स, और ताकि हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकें, उनसे अपना वो स्किल का लेवल बढ़ा सकें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बराबर आने के लिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: राइट सर, प्लीज कैरी ऑन एक्सप्लेनिंग द एट्रीब्यूट्स.
0: अगर हाँ, या ये तो पांच एट्रीब्यूट्स की मैंने बात की थी. फिर इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं यूनिवर्सिटी की लेवल के ऊपर बात करूँ तो स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे निकाल रहे हैं सोसाइटी के अंदर. ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एथिक्स के अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट क्या है. दूसरा इंसान अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ही शुड हैव दैट नॉलेज एज वेल कि उसको मैंने किस तरह ट्रीट करना है. उसने यहाँ के एथिक्स, लाइक पाकिस्तान के एथिक्स को फॉरगो नहीं करना, उसको देखना है, उसको नॉलेज होनी चाहिए. ही मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, विच इज़ द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर मैं बात करूँ कि हम अगर लेट से एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास, तो वो इतने ज़्यादा उसने कभी कम्युनिकेट नहीं किया होता डिफरेंट फोरम्स के ऊपर. कम्युनिकेशन के बाद ये है कि ही इज नॉट इक्विप्ड विद प्रेजेंटेशंस. कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो डिबेटिंग सोसाइटीज के अंदर जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, बट अगर मैं हर इंजीनियर की बात करूं तो ही मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. तो उसको भी एड्रेस कर रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन लेवल को, उसकी राइटिंग लेवल्स को उस जगह पे लेके आ रहा है जो कि एक इंजीनियर से रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूं तो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. बेसिकली इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पढ़ के आ रहे होते हैं, टीम्स के अंदर उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, तो ये एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें पता हो कि मैं अगर आ रहा हूँ किसी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से, तो मुझे कल को किसी जॉब के लिए जाना है इंडस्ट्री के अंदर. तो इंडस्ट्री के अंदर तो डिफरेंट पीपल आर डूइंग थिंग्स. वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम वहाँ पे कर रहे होंगे उसके साथ मिलके ही उसने काम करना है, तो ही शुड हैव दिस नॉलेज कि मैंने टीम के अंदर किस तरह काम करना है. अगर मैंने टीम को लीड करना है तो उसको किस तरह लीड करना है. तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी है, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट सिखाते हैं बच्चे को, मैनेजेरियल स्किल्स उसके अंदर डिवेलप करते हैं कि ही मस्ट बी एबल टू मैनेज things, he must be able to manage stuff like humans ko manage kis tarah karna hai.
1: Okay listeners, keep listening, we will be right back after a short musical break at FM 92.6 UCP ki duniya.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स. ओके और सब, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि OBE डेवलपमेंट के अंदर क्या लेवल्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह स्टूडेंट्स वो स्किल गेन करते हैं और किस तरह हम जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने का क्राइटेरिया सेट करते हैं.
4: बेसिकली अभी हम लेवल्स की बात कर रहे थे, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं. हर कोर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि यार इस कोर्स के बाद स्टूडेंट जो है ही मस्ट बी एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स इंडिपेंडेंटली और उसके ये स्किल्स डेवलप हो चुके हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद. तो वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उस कोर्स लर्निंग आउटकम्स को आगे फर्दर हम मैप करते हैं किसके साथ, जो हमने मैंने अभी आपको प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. तो अब अगर ओवरऑल बात करूं मैं OBE सिस्टम की, तो ये अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो मेरे पास विजन है, फिर मिशन है, विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मिशन ऑफ द फैकल्टी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स जो है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो इनकलकेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो है. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स. तो अब हमारे पास अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे पास 40 डिफरेंट कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को हम ओवर टाइम पढ़ाते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट 3 हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर कोर्स हों तो 120 कोर्स लर्निंग आउटकम्स, विच इज़ अ वे बिग थिंग. और एटलीस्ट हमारे पास 3 दफ़ा असेस भी उनको हमने करना है कोर्स के अंदर. और उनकी असेसमेंट किस तरह होगी, वो क्विजेस के थ्रू हो सकती है, वो टेस्ट्स के थ्रू, वो मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू हो सकती है, फिर लैब असाइनमेंट्स हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर जो है वो थ्योरेटिकल इंजीनियर तो हम बनाते नहीं हैं, तो लैब्स के अंदर जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी असेसमेंट भी हो रही होती है. तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स के अंदर फिर हमने कोर्स के साथ तो हमने उनको मैप किया होता है, उसकी थ्योरी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स हम कोर्स के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, बट उसके जो स्किल्स हैं वो लैब के अंदर वो डेवलप करता है. तो लैब के अलहदा से फिर हम डिफाइन करते हैं. अब अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली कोर्स के अंदर ये असेसमेंट्स की हैं चीज़ें, और जो लैब की असेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होती है. उसके अंदर हम रूब्रिक्स बनाते हैं, रूब्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि यार अगर स्टूडेंट ने इस तरह का रिस्पांस दिया या इस तरह का स्किल एक मशीन को ऑन करने के, उसको वर्किंग पोजीशन के अंदर लाने के, और उसके अंदर जो एनालिसिस हमने डेवलप करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसके डिफरेंट वर्क एथिक्स हो सकते हैं. लेट्स से अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो हम डिफरेंट फ्लूइड्स के साथ डील कर रहे हैं. अब एक स्टूडेंट अगर आता है और वो फ्लूइड किसी भी लिक्विड को स्पिल कर देता है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, तो उसके स्किल्स को हमने असेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर हमने उस चीज़ को असेस नहीं किया प्रॉपरली कि ही डिड ही मैनेज दोज थिंग्स. अगर मैं दूसरी तरफ फ्लूइड से हट के बात करूं तो हमारे पास RAC की लैब है, जिसके रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन कहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड है, और वहां पे कहीं पे फायर हैजर्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज कि मैंने अब इसके साथ किस तरह डील करना है. तो अगर वो नॉलेज नहीं है स्टूडेंट के पास और उस लैब को उसने पास कर लिया है विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि कल को उसने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है. इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ ही इज़ एबल टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स. और अगर हमने वो चीज़ नहीं सिखाई, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो उसको हमने किस तरह असेस किया था और उसको एक ए ग्रेड दिया था इन लैब. क्योंकि यूजली इससे पहले जब ये सिस्टम नहीं था, तो इससे पहले जो लैब्स को पास करना बहुत आसान था. आपने एक लैब की कॉपी बनाई, उसके अंदर उसका एक छोटा सा वाइवा हो गया और उसको आपने असेस करके बता दिया. अब जो है हम उस लैब के अंदर जो असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर 3 डोमेन्स के अंदर हम उनको स्टूडेंट्स को असेस करते हैं. एक उसकी इफेक्टिव डोमेन है, एक उसकी साइकोमोटर डोमेन है, और एक उसकी कॉग्निटिव लेवल के ऊपर डोमेन है. कॉग्निटिव ये जो टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स हैं, जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन गुजरा है तो उसके अंदर बेसिकली ही हैज़ डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स के जो हमारे पास स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉग्निटिव लेवल के हैं, यानी कि अगर वो पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर देता है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता है तो वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसके। दूसरी तरफ बात करूँ तो साइकोमोटो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, उन साइकोमोटो स्किल्स के अंदर अगर फर्दर इसके अंदर जाऊँ तो साइकोमोटो स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं कि उसने मशीन को किस तरह ऑन किया, किस तरह उसको ऑपरेट किया, फिर आफ्टर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड कि उसने उसी तरह मशीन को छोड़ दिया या उसको क्लीन किया या उसके अंदर अगर कोई आउटलेट था इलेक्ट्रिकल आउटलेट था उसको स्विच ऑफ किया, उसने ऑपरेट एज सच क्या किया, उसके स्किल्स क्या थे, उसको एक्सपेरिमेंटल रिग को बनाने में उसके क्या एफिशिएंसी उसने उस अंदर अपनी पुट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर साइकोमोटो के अंदर उसके जो उसकी नॉलेज थी उसने करेक्टली उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया वो हम उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं। अदर थिंग इज इफेक्टिव डोमेन। अगर मैं इफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो वो लेट से अब एक स्टूडेंट काम कर रहा है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ और वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, उसकी मूवमेंट इन द लैब किस तरह की है, उसने किस तरह रिस्पॉन्ड किया डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो हम असेस उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जो जिसको करने के बाद हम कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया है जिसको हमने लेके आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट को इंजीनियर एक डिग्री दे रहे हैं, उसकी एक पहचान बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ये इंजीनियर के अंदर नहीं होती, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते तो इट इज़ इन माय ओपिनियन यूजलेस। मैं अभी इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूसीपी के अंदर एफर्ट्स अभी हो रही हैं कि यूनिवर्सिटी वाइड इस चीज़ को अप्लाई किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज है तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अंदर हर फैकल्टी के अंदर उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए, हर कोर्स के ऊपर उनकी कोई ना कोई आउटकम डिफाइन होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। ऑब्वियसली हम एज एन इंजीनियर यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं और ऑब्वियसली हमें अगर 2014 से हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो हम इस वक्त भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं और ऑब्वियसली 11 इयर्स आफ्टर अप्लाइंग दिस एक्रेडिटेशन सिस्टम तो उसके अंदर भी हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा स्टार्ट, तो हम जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, हमें भी तकरीबन 2 साल जो है वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई थी, तो अभी हम मैनेजमेंट के साथ मिलके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ होल अगर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड रैंकिंग इन ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम के ऊपर जाएं।
3: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन बताया ऑन OBE वॉशिंगटन एकॉर्ड और जो एफर्ट्स UCP और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग UCP के अंदर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का लेवल इंटरनेशनल लेवल लेके जाने के लिए, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सके। ओके लिसनर्स थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलरेस, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे लिसनर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड वॉशिंगटन एकॉर्ड पे और जो एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्पेशली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कर रही है ताकि आपके स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उनकी स्किल्स का भी और उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल सके इंटरनेशनली भी और नेशनली भी।
4: बिल्कुल,
3: एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स एज वेल कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, एंड विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट। दिस इज मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आवर गेस्ट टुडे वर डॉक्टर गुलरेज अहमद आल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीकुर्रहमान। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में फार्मेसी और फार्मासिस्ट से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं और उनके चैलेंजेस को सामने रखते हैं और उनके ऊपर हम डिस्कशन लेते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ माहरीन, फार्मेसी से रिलेटेड माहरीन हमारे पास आते हैं और अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफीद करते हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास प्रीवियसली भी डॉक्टर मोहम्मद जमान मौजूद थे और आज भी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जमान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है और ये लास्ट 6 और 7 ईयर से ये यहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब।
3: डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने का, और जैसे प्रीवियस भी हमने डिस्कशन की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपके साथ ये डिस्कस करके और लोगों को फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस देके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आज भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हो सके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि फार्मेसी प्रोफेशन क्या है और उसमें जो फार्मासिस्ट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कम्यूनिटी को सर्व करने में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारी लास्ट जो डिस्कशन हो रही थी उसमें हम बात कर रहे थे कि फार्मासिस्ट का रोल कम्युनिटी फार्मेसी में क्या रोल है और उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और आपने बड़े अच्छे अंदाज से इसको हमें बताया था, हमारे सामीन को बताया था। और उसके बाद हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के हवाले से भी चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया था। और आज मैं चाहूँगा कि हमारे फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री में क्या रोल है और इस फार्मेसी प्रोफेशन की इंडस्ट्री में क्या खिदमात हैं और फार्मासिस्ट किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर, ड्रग डेवलपमेंट में, ड्रग प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्री में आप इसका थोड़ा सा रोल मुझे बताएं ताकि हमारे सामीन को पता लगे कि फार्मासिस्ट ना सिर्फ हॉस्पिटल में मौजूद होता है, ना सिर्फ कम्युनिटी में मौजूद होता है, बल्कि इंडस्ट्री में ड्रग की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका एक कलीदी किरदार है।
3: जी डॉक्टर साहब, जैसे प्रीवियस सेशन में भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इस कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट है फार्मासिस्ट, इसी तरह हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, अगर मैं ये कहूँ कि फार्मासिस्ट के बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कुछ नहीं, तो इसमें कोई जो है झूठ नहीं होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने में फार्मासिस्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का लेआउट डिज़ाइन सजेस्ट करने से लेकर उसके अंदर जितनी वर्किंग है उस सारी वर्किंग में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी भी हमारे पास मेडिसिन डेवलप होती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनकी मुख्तलिफ जो डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल हैं, सीरप हैं, सस्पेंशन हैं, ये सब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, यानी वो मटेरियल जिससे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, वो भी फार्मासिस्ट की अप्रूवल के बगैर नहीं आ सकती, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता है कि कौन सा मटेरियल किस क्वालिटी का है और वो किस तरह की प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ये कहना हम झूठ नहीं हो सकता कि फार्मासिस्ट अगर इंडस्ट्री से निकाल दिया जाए या फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में ना हो तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए जैसे मैंने गुजारिश की कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हर स्टेज पे फार्मासिस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रॉ मटेरियल सेक्शन में जब रॉ मटेरियल आता है तो वहाँ फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही उसको पास किया जाता है, या अगर वो उस क्वालिटी का जो कि रिक्वायर्ड है ना हो तो फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। जब रॉ मटेरियल से जो हमारा केमिकल है, जो हमारा मटेरियल है, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करता है, तो वहां पे भी रिसीव करने वाले फार्मासिस्ट ही होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम टैबलेट सेक्शन की बात कर लें, तो रॉ मटेरियल सेक्शन से जब टैबलेट सेक्शन में आएगा, तो वहां पे टैबलेट सेक्शन में मौजूद जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी निगरानी में वो रिसीव करेगा और उसको फिर अकॉर्डिंगली प्रोसेस करवाएगा। अब जब टैबलेट सेक्शन में वो मटेरियल पहुंच जाएगा, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से प्रोसेस करना है कि हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी की टैबलेट बन सके, वो सारा फार्मासिस्ट की सुपरविजन में होता है। अब जो टैबलेटिंग का प्रोसेस है, इसमें एक इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टर्म यूज की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन किया जाता है कि अल्टीमेटली हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बन सके। तो ये जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी सब फार्मासिस्ट की जेरे निगरानी ही होता है। फिर उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, तो ये चली जाती है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में। अब क्वालिटी एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है, उसमें भी फार्मासिस्ट ही होते हैं जो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट के साथ इन क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसेस है उसको भी देख रहे होते हैं। और फिर जब ये प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चली जाती है, यहाँ पे जहाँ उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी के चेक के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी ऑफिशियल बुक्स जो हैं, जो फार्माकोपिया हैं, उनके अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो फार्मासिस्ट होगा, वो अपने जेरे निगरानी इन प्रोडक्ट को अवेल्युएट करवाएगा कि ये जो बनी है टैबलेट हमारे पास है, ये जो प्रोडक्ट डेवलप होके आई है, क्या उन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है या नहीं। और जो क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, जो अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ही होगा, वो इस चीज़ को अश्योर करता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, क्या वो मेंटेन हो रही है या नहीं। उसके बाद जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है और इसको मार्केट में भेजा जाता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास पूरी एक टीम होती है, जिसमें मोस्टली आजकल तो आप यकीनन देख रहे होंगे कि जो लीडिंग पोजीशन पे वो फार्मासिस्ट ही हैं, जो इन प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाई जाती है, डॉक्टर्स तक पहुँचाई जाती हैं, डिफरेंट जो फार्मेसीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। अगेन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मेसीज हैं, ये भी अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ही होते हैं, और वहाँ से ये डिस्पेंस की जाती हैं आगे जो पेशेंट हैं उनको ये पहुँचाई जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से लेकर जो एंड यूज़र है हमारा, जो पेशेंट है, वहाँ तक ये सारा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही चलता है। तो हम किसी तरह से भी फार्मासिस्ट को या उसके रोल को इस सारे प्रोसेस से, जो हेल्थ केयर का एक सिस्टम है, उसमें से हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि फार्मासिस्ट निकल जाएगा। जिस स्टेप पे भी आप फार्मासिस्ट को इसमें से माइनस करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज होगी। तो इंडस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं कि कलीदी रोल है एक फार्मासिस्ट का क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में।
2: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रोसेस को, जो इंडस्ट्री में होता है, उसको आपने बयान किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर सेक्शन में फार्मासिस्ट की मौजूदगी, तो फार्मासिस्ट एक इंडस्ट्री के अंदर कितने फार्मासिस्ट एटलीस्ट जो उनसे है ना रिक्वायर्ड होते हैं, अगर एक

0: सोशो इकोनॉमिक पोजीशंस आपको पता है पाकिस्तान की कैसी हैं, तो हर कोई अगर कोई डिग्री कर रहा है तो कोई जॉब के लिए कर रहा है या फिर अच्छे अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं या किसी और फील्ड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए?
1: देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो यस, इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर करीब 1000 प्रोडक्शन यूनिट हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। अगर हम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सेटअप है। जैसे अभी पिछले आपके सवाल के जवाब में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत ना हो। चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर लें, चाहे आप रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है या जो रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट है वहाँ की बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको मल्टीपल नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो चाहिए। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का बेहतरीन स्कोप है। देखिए जी, स्कोप जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वालिटी वर्क जो है या क्वालिटी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज भी बेशक हमारी जो एकेडमिया है वहाँ से लार्ज नंबर ऑफ फार्मासिस्ट पर ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी फार्मासिस्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे हर वक्त में मौजूद रहती है। तो अगर हम क्वालिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएं, और जो कोशिश भी की जा रही है, तो इंडस्ट्री के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा नीड है, उनकी बहुत ज़्यादा खपत है, तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जॉब के हवाले से एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इन फार्मासिस्ट को जो है हम ओबलाइज कर सकते हैं, जहाँ इन फार्मासिस्ट की जो सर्विसेज हैं वो हम ले सकते हैं।
0: ओके डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के रोल की और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन की, फार्मेसी प्रोफेशन की बात करते हैं, इसी के ऊपर हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखें। अब छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, और उसके बाद हम आपके साथ वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, और प्रोग्राम हमारा चल रहा है फार्मेसी और उसका स्कोप और फार्मासिस्ट का स्कोप। तो मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद।

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक. मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीक रहमान और हमारे साथ हैं प्रेस्टीजियस गेस्ट हमारे डॉक्टर मोहम्मद जमान. हम उनके साथ एक सैरात हासिल गुफ्तगु कर रहे हैं फार्मेसी और फार्मेसी के प्रोफेशन के हवाले से. और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगु हो रही थी डेवलपमेंट के बारे में, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में. डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगु फरमाई ब्रेक से पहले. फार्मासिस्ट का इंडस्ट्री के अंदर रोल आपने बड़ी अच्छी उसके ऊपर गुफ्तगु दी. मुझे काइंडली ये बता दें कि फार्मासिस्ट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं या इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जिसमें हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, या जो अब करंट हमारी जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ रहे हैं जो नाकाबले बयान हैं, या अगर आप बयान कर सकते हैं तो काइंडली उसके ऊपर हमें बताएं कि हम नई ड्रग डेवलपमेंट में, न्यू ड्रग डेवलपमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं.
2: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो आंसर है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री हो. देखिए, न्यू ड्रग डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ये सारी दुनिया के लिए चैलेंज है कि एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं. सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे पास है कॉस्ट का या फंडिंग का. देखिए, हमारे जैसे कंट्रीज़ जो कि जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं वो इतना हाई कॉस्ट बियर नहीं कर सकते. एक नई ड्रग को डेवलप करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते. दूसरी बात ये कि एक ड्रग को डेवलप करने के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक ड्रग को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. इट टेक्स अराउंड 10 to 15 years. यानी एक सबर आजमा काम है कि आपने 10 से 15 साल इसके ऊपर सर्व करने हैं, फिर उसके बाद कहीं आपके पास कोई एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है. और अगेन उसमें जो एक बड़ा इशू ये आता है कि जो सक्सेस के चांसेस हैं हार्डली 10% है. यानी अगर आप बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल का टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास जो चैलेंजेस आते हैं वो उसके सक्सेस के हैं. हार्डली 10 to 15% जो है वो आपके पास सक्सेस के चांसेस होते हैं कि जो आप नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो आपके विश एंड विल के अकॉर्डिंगली हो या जो आप डिजायर्ड आउटकम लेना चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस कर सके.
1: अमेजिंग डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है कि ड्रग डेवलपमेंट में आपके पास 10 to 15% चांसेस होते हैं. ओके okay.
2: हाँ जी, इसी तरह सर फिर हमारे पास जो ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसे अप्रूवल भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप की है या प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसका अप्रूवल आपने लेना है. क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ वही प्रोडक्ट डेवलप होती हैं, वही प्रोडक्ट मार्केट हो सकती हैं जो जिनका ऑलरेडी FDA से अप्रूवल हो. जो ड्रग किसी तरह से भी किसी भी फॉर्म में FDA से अप्रूव नहीं है वो पाकिस्तान में उनका अप्रूवल एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उन ड्रग्स को अप्रूव नहीं करती जो ऑलरेडी FDA या यूरोपियन जो एसोसिएशंस हैं उनसे अप्रूव ना हों.
1: इसका मतलब ये हुआ कि हम पाकिस्तान में नई ड्रग डेवलप नहीं कर सकते, या हमें पहले FDA से अप्रूव करानी पड़ेगी फिर ड्रैप हमें उसको बनाने का जो लाइसेंस देगी.
2: डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट है ना इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो हमारे लिए डेफिनेटली ये चैलेंज है कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट FDA से अप्रूव नहीं होगी उसको यहाँ पे अप्रूव करवाना या लॉन्च करना एक चैलेंज है, हम उसको नहीं कर सकते. लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए एक बेनिफिट भी है क्योंकि FDA से जो ड्रग अप्रूव होके आती हैं और फिर उनको हम पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक जो सेफ्टी का मार्जिन है ना वो हमें मिल जाता है कि अगर FDA से एक ड्रग अप्रूव है इट मींस वो ड्रग जो है वो सेफर होगी फॉर यूज. अदरवाइज बाज़ औकात आपने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, तो जो सेफ्टी का इशू है अगर ये इस तरह से कंट्रोल ना हो तो अनसेफ जो प्रोडक्ट्स हैं या वो प्रोडक्ट जो शायद ना हमारे लिए उस लेवल की सेफ्टी पेशेंट को प्रोवाइड ना कर सकें वो भी अप्रूव हो जाएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हम ड्रग डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्री ने, हमारी ने कभी ये कोशिश की है कि रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या पाकिस्तान में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है?
2: डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट जो है सिटी फार्मा, जो मेरे नॉलेज में है वो सिटी फार्मा, जहाँ पे हम पैरास्टामोल को सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा कोई नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, जब वो रॉ मटेरियल जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज होते हैं, वो सिंथेसाइज कर रहे हूँ।
1: इसका मतलब है कि कुछ चैलेंजेस होंगे ऐसे जिसकी वजह से हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं, क्या आप उन चैलेंजेस की निशानदेही कर सकते हैं?
2: देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है और जो फैसिलिटीज़ हैं उनका है। हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस सिंथेसिस को या प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से आपने ये चीज़ देखी होगी कि हम मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, या जो मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल जो इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में आ रही हैं, उन प्रोडक्ट को यहाँ पे ले के आना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस कॉस्ट को बियर कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो जो एंड यूज़र है, दैट इज़ पेशेंट, उस तक पहुँचाई जा सके।
1: शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन रही है और एंड यूज़र पे, पेशेंट्स के पास कॉस्टली मेडिकेशन जा रही है, क्या यही वजह है?
2: जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली जब आपके पास रॉ मटेरियल जिससे आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है, जब आप वो इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो आप सही फरमा रहे हैं, ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मेडिसिन की प्राइस है वो ज़्यादा है।
1: अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम मिलते हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अभी तक हमारे पास जो हमने गुफ्तगू की डॉक्टर मोहम्मद जुबान, जो हमारे पास एक गेस्ट आए हुए हैं और बड़े प्रेस्टीजियस गेस्ट हैं हमारे साथ, हमने इनके साथ गुफ्तगू की इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के हवाले से कि इंडस्ट्रीज में हमें फार्मासिस्ट को और फार्मेसी प्रोफेशन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. और उसके बाद हमने ड्रग डेवलपमेंट के हवाले से भी इनके साथ एक सैर हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने इसके बड़े सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी दिए. और अब हम डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं. अभी आप फरमा रहे थे कि FDA से अप्रूव्ड या ड्रैप से या FDA से या दूसरी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे अप्रूव्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी हैं पाकिस्तान में जो जिनके लाइसेंस की बेस के ऊपर इंडस्ट्री में मैनुफैक्चरिंग हो रही है.
4: जी डॉक्टर साहब, ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 1000 के करीब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं फार्मास्यूटिकल्स के, बट बदकिस्मती से कोई एक भी FDA अप्रूव्ड यूनिट नहीं है. पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी यूनिट FDA अप्रूव्ड नहीं है.
3: डॉक्टर साहब, आर यू श्योर कि वाकई कोई FDA अप्रूव्ड इदारा नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में?
4: जी डॉक्टर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक तो अब तक यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी FDA अप्रूव फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है. हाँ, कुछ कंपनीज कोशिश ज़रूर कर रही हैं, कुछ कंपनीज ने जो है डिफरेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सर्टिफिकेशन ली हुई है. कुछ कंपनीज ने, जैसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है और इसी तरह मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, उससे कुछ कंपनीज ने सर्टिफिकेशन ली हुई है. लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तान के अंदर FDA अप्रूव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है.
3: मतलब ये कि कोई ना कोई सर्टिफिकेशन ऐसी है जिसकी बेस के ऊपर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही है.
4: हाँ जी,
3: क्वालिटी प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है.
4: ISO सर्टिफिकेशन मेजोरिटी ऑफ द जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो ISO सर्टिफिकेशन करवा रही हैं. रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो ISO सर्टिफिकेशन होती है. और जैसे मैंने अभी कुछ एजेंसीज के नाम भी लिए हैं जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनसे भी हमारी कुछ फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो सर्टिफिकेशन ले रही हैं और कुछ के पास सर्टिफिकेशन है भी. सही
3: डॉक्टर साहब, ये तो ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू है जो हम कर रहे हैं और आप हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी हो रही है हमारे सामेन के लिए. तो मेरे ख्याल में इसको आप, क्योंकि UCP से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और आपका सब्जेक्ट भी यही है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज आप पढ़ाते हैं और आपने बहुत सारे MPhil और PhD प्रोड्यूस भी किए हैं यहाँ पर और आप अंडर ग्रेड के क्लासेस को भी यहाँ पर पढ़ाते हैं. तो मुझे ये बताइएगा कि फार्मेसी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की एफिलिएशन या फिर MOUs किसी इंडस्ट्रीज़ के साथ यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ वो साइन हुए हुए हैं और हमारे तालिब इल्म जिनसे हैं वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं या ले रहे हैं, क्या उसका कोई शेड्यूल भी है और किस हवाले, इस हवाले से आप हमें कुछ बताएंगे?
4: जी डॉक्टर साहब, हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो फैकल्टी है, फैकल्टी फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हर साल जो है वो विजिट करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट सेक्शन को जाके विजिट करते हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं. हमारी फैकल्टी के अंदर एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड भी है जिसके मेंबर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पैसिफिक फार्मा है, इसी तरह शाजो ज़का फार्मास्यूटिकल है, इसी तरह मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल है और कुछ और भी ऐसी फार्मास्यूटिकल्स हैं जिनके साथ हमारे MOUs भी हुए हैं और जिनके साथ जो है हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से. जी, इसी तरह जो है हमारे स्टूडेंट है वो CCL फार्मास्यूटिकल्स, जो लाहौर की एक बड़ी नॉन फार्मास्यूटिकल्स है, वहाँ पे भी जाते हैं, विजिट करते हैं. उनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेटिव वर्क चल रहा है और उनके साथ हम कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं. तो फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो है वो इन इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके ही चल रही है, जिससे दोनों तरफ म्यूचुअल बेनिफिट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी और हमें भी।
3: अच्छा, हमारे स्टूडेंट यहाँ पर इंटर्नशिप्स भी ले सकते हैं इन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमारे MOU साइन हुए हुए हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, जिन इंडस्ट्रीज के साथ हमारे MOU साइन हुए हैं, शायद मैं उनमें से कुछ का नाम नहीं भी ले पाया, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जिसमें हाइनून के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है हमारे वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं। इवन जो समर का टाइम होता है हमारे पास, समर जो सेमेस्टर है, उसमें हमारे फैकल्टी इंडस्ट्री प्लेसमेंट भी होती है कि हर साल हमारी फैकल्टी के कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके हैंड ऑन प्रैक्टिस लेते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं।
3: अच्छा, हमारे जो टीचर्स हैं इन इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो उनसे रिसर्च डेवलपमेंट का भी फायदा ले रहे हैं इंडस्ट्रीज उनसे, या हम तो उनसे फायदा ले रहे हैं, चले ये हम उनसे इंटर्नशिप अपने स्टूडेंट्स की करवा रहे हैं, हम अपने उनको विजिट्स करवा रहे हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस उनको सिखा रहे हैं, तो क्या वो भी हमसे कोई फायदा ले रहे हैं?
4: देखिए डॉक्टर साहब, जब भी कोई MOU साइन होता है तो इसमें दोनों जो पार्टीज हैं उनके म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। जैसे डॉन वैली फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है, उनके साथ हमने जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। मैंने खुद कुछ इंडस्ट्रीज के साथ जो है एज अ रिसर्च कंसल्टेंट और R&D कंसल्टेंट के तौर पर काम किया हुआ है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री से बेनिफिट ले रहे हैं तो इन रिटर्न उनको भी हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है उनमें उनको फैसिलिटेट करें। तो ये डेफिनेटली म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो इससे बेनिफिट ले रही हैं।
3: मतलब ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है, ये इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी लिंकेजेस में बड़ा अच्छा किरदार अदा हो रहा है, और आपकी तरफ से ही ऑब्वियसली हो रहा है, फार्मेसी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही हो रहा है ऑब्वियसली, तो इसका तो सेहरा आप लोगों को जाता है डेफिनेटली, और इसका सेहरा ऑब्वियसली डीन साहब को भी जाता है, और हमारे आप जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पर उनको भी इसका सेहरा जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो गुफ्तगू कभी ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू है, इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद भी टाइम लेंगे। हमारे पास आज का प्रोग्राम का टाइम इस वक्त ख़त्म होता है, हम आपको दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। इस प्रोग्राम में हम फार्मेसी और फार्मासिस्ट के प्रोफेशन के हवाले से बात करते हैं, उसको चैलेंजेस जो पाकिस्तान में फेस करने पड़ रहे हैं उसके हवाले से बात करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point Six.
2: In Sadaye Lahore, in Sadaye UCPS, Lotfan Gush Bedahid, FM 92.6, Jahane UCP.
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
4: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: UCP 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic 2.6.

0: मौसी की चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से नाराजगी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
3: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस. देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Majda 1.6.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6 UCP की दुनिया।
5: व्हेन यू आर ऑफ, टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.
1: Ek naya andaaz,
2: ek nayi soch,
1: ek nayi pehchan,
2: ek nayi lagan.
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.